हे पूर्ण परमात्मा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा नूं इंज नहीं कहिंदा, मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर। वो इंज कहिंदा, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे, ये फर्क है। एक कह रहे है, हे प्रभु, मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन करीबन असी देखते हाँ, एक पिता भी सियाणा है, किस दो तीन साल दे बच्चे दी लोड़ की है, एक साल दे बच्चे दी लोड़ की है। अगर मां नूं पता ही नहीं, प्यो नूं पता ही नहीं, तो शायद मां बाप एवें बन गए ने, ए मां बाप हैं नहीं। इस दो तीन साल दे मासूम बच्चे दी वास्तविक लोड़ा की ने, मां समझदी है, प्यो समझदा है, और इस बच्चे नूं मंगनी करनी पैंदी, क्योंकि अजे विचारा मंगण जोगा भी नहीं। मां पूरी करदी है उसकी मंगा नूं, पिता पूरा कर रहा है उसकी जो है लोड़ा नूं। जगत पिता परमात्मा नूं क्या वाकई नहीं पता कि साड़ी लोड़ा की ने, साड़ी चाहत की है, और समय दे मुताबक, उम्र दे मुताबक, जीवन दे मुताबक साड़ियां लोड़ा की हो सकदियां ने। अगर ये सब कुछ परमात्मा नूं पता ही नहीं, तो जैसे ओ पिता पिता नहीं कहला सकदा जो दो तीन साल दे बच्चे दियां लोड़ा नूं नहीं समझदा, वो परमात्मा भी कैसा परमात्मा होवेगा। और क्यों करे उस नूं परमात्मा आख्या जाए जिस नूं जीवां दी लोड़ां दा ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां दा उस नूं पता है, सब दा उस नूं पता है, और सब दी झोली च लोड़ां दे मुताबक, उस दी लोड़ां दे मुताबक वो वस्तुआं पांदा है। और ये गुरु नानक दी सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसे दी झोली च दुख भी पांदा है, ये दुख उसकी लोड़ होंदी, उस तो बिना वह संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वह सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसके कदम सही मार्ग ते जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्म चिंतन करने वाले पुरुषों की बहुत पुराने समय तो यह सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरी इच्छा है वह पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे होया पहली अवस्था उन्हां दी ए बनदी है, अगर वाकई उन्हां नूं जित प्राप्त हो रही है, तो मैं फिर अर्ज करां, मन नाल संघर्ष की है लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के उहदे सुराख कर देना, रस्ता बना देना आसान है, अहंकार नाल सिर टकरा के ते अहंकार नूं चिकना चूर करना कठिन है, औखा है। अहंकार नूं चूर करके जिन्हां ने निरंकार दा मार्ग बनाया, लोभ नूं मिट्टी दे च मिला के जिन्हां ने संतोख दा दीवा जलाया, काम नूं शांत करके जिन्हां ने अपने अंदर राम नूं प्रगट कीता, ए बहुत वड्डे महाबली लोग ने। जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे, कौन है ऐसा व्यापक महाबली जो इन्हां पंजां नाल संघर्ष करके जित नूं जो है प्राप्त होया होवे। तो जद कोई काम नूं जित लैंदा है, राममई हो जांदा है, लोभ नूं जित लैंदा है, संतोखमई हो जांदा है, हंकार नूं जित लैंदा है, निरंकार दी शक्ल सूरत जो है धारण कर लैंदा है, ऐसा संघर्ष उस नूं महान बना देंदा है, अति जो है उत्तम बना देंदा है। तो मार्ग जिंदगी विच ए दो ने। अक्सर ऐसा देखिया जांदा है जैसे पानी निवाण दी तरफ अपने आप चलदा है, मनुख खड दी तरफ, निवाण दी तरफ अपने आप चल पैंदा है, किसे सहारे दी लोड़ नहीं, किसे सहायक दी लोड़ नहीं, किसे मददगार दी लोड़ नहीं, जीवन दा वेग अपने आप निवाण दी तरफ जांदा है। पर जीवन नूं बुलंदियां ते लै जाणा है, चढ़ाइयां ते लै जाणा है, सहारे दी लोड़ है, आसरा चाहिदा है, एक समय दा आसरा, वक्त दा आसरा, एक प्रभु दा आसरा, परमात्मा दा आसरा। एक अमृत वेले जागना ते एक परमात्मा दा आसरा मिल सके, अरदास जोदड़ी, तिसे अगे नानका
खले कीजे।

0: साहब घर गए थले बह गया। सतगुरु ने गलवकड़ी विच लै के कोल बिठाया ते तुर लग्या क्या रूपे कुछ मंग लै क्योंकि अजे भी घर उन्नी दुनिया की दौलत नहीं। ते चरण पकड़ के कहिंदा सिखी सिदक ते नाम दी प्रीत बसदा। साहब ने क्या पलिया तेरे घर विच तां अनेकां वरसाए जाणगे अज तो बाद तुहाडी संतान दा अदब लोकी गुरु दे पुत्रा बराबर करन तुहाडी अंत नूं मन्निया जाएगा। प्यारियो आओ उस दल भंजन गुरु दे चरणा विच आपां भी जुड़िए जिहड़ा इन्नियां रहमतां करदा ओहदे इतिहास विच ही घटनावां ने। किते कोई बस्तर तैयार करे उसे श्रीनगर तुरिया जांदा है, किते कोई नानक मणे चेते करे उसे तुरिया जांदा है, किते कोई भोजन तैयार करे ओहदे कोल चला जांदा है। ए आपां आउण वाले दिनां विच वाचांगे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब करे कृपा सानू अपने चरण चरण विच रख के अपनी प्रीत प्रतीत बख्श दे। इन्हां बेनतियां प्रवान करिया जे। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच

एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखर बिख खाय, माया मोह परम पर फूले, सुत दारा शो प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनहो गुर संगत, तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पात कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता,

जो लड़ दीन के खेत पुर्जा पुर्जा कट मर कबू ना छड़े खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोई ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिमें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी

0: केश दान, रैत दान, बबेक दान, विषा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, नाल फिर एक तरला लेंदा श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान। वो इशनान मंगदा है अमृतसर दे, इहदा मतलब जे इशनान मंगदा है उहदे विच किन्नी कु ताकत है। वो साधु कहिंदा है अमृत सरोवर जिथे भी ये शहर तो सब तो नीवी थां ते भी उहदे बचन ने कहिंदा कदी सोचिया है कि हरिमंदर नीवी थां ते क्यों वे बाकी थां उच्ची ए नीवा है। वो कहिंदा इहदा कारण जे आखदा समझो इस गल नूं लोक पुन दान पूजा करदे ने बैकुंठ दे लई, पर कहिंदा मेरे परमेश्वर ने तकिया है एक पासे लोक बैकुंठ नूं भालण वाले ने ते एक पासे हरिमंदर नाल जुड़े ने, कहिंदा नीवी थां ते क्यों वे। वो बचन करदा मालक ने तकड़ी दे एक छाबे विच हरिमंदर दी धरती नूं रखिया है, दूजे विच बैकुंठ नूं पाया है। जिस स्वर्ग दी तुसी चाहना कर दे दुनिया दे लोगो, ओ अखां तो ओले किते उच्चा चला गया है, ते जिस धरती अंदर भारापन सी जिदे अंदर कृपा सी ओ नीवा टिक गया। कहन लगे झुकदे नीवे हुंदे ने, खौला ता शाबा उपर नू चला जांदा है। उस उदासी ने बचन लिखे, कहन लगे हर मंदर और बैकुंठ को तोल लियो हरदास, भारो कुतो सो गिर परयो खौरो चढ़ो आकाश। उस दे नाल एक साधु ने होर गल कही, कहन लगे जिन कीन शनान सुदा सरमे, तिन गंग शनान कियो ना किया। जिने हरिमंदर विच शनान कर लिया ओनू की लोड़े तीर्थां ते भटकन दी, जिन कीन शनान सुदा सरमे, तिन गंग शनान किया ना किया। जिनी श्री हरिमंदर साहब देख लियो, तिन जगन्नाथ दीदार किया ना किया। जिन पार सुनियो गुरु ग्रंथों को, कहन लगे रस वेद पुराण लिया ना लिया। जिन दीन दिसवंद गुरु दर में, तिन तीर्थ दान किया ना किया। कहन लगे इन बातन ते जो बेमुख है नर, जिन्हें इशनान नहीं किया, जिन्हें दिसवंद नहीं दिता, जिन्हें हर मंदिर ते श्रद्धा नहीं प्रगटाई, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब नल नहीं जुड़िया, इन बातन ते जो बेमुख है नर, सो भाव मैं जिया ना जिया। भावे वह ज्यौदा ना ज्यौदा इको जे है। जदों इन्हें इशनान किया, मेरे मालक ने कृपा की, एदे तन नूं आरोगता बख्शी है।
1: सकल अंग ते रोग नसायो, कंचन वर्ण रंग मन पायो।
0: कवि जी किन्ने एदे सारे तन दा रोग बिनस गया, मेरे वाहिगुरु ने कृपा की, एदी देही कंचन

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

साबिद तुम हर जानो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे कम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा। जित मिले चूप